0: रेडियो ऑन है, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Cool song.
2: Radio Olive par aane wala gana, cool song of the hour.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
1: cool song.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ऑलिव

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 May तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कवाली फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली देंगे ये सलामी चलने को जगह

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस, एग्जीक्यूटिव ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम।
3: इन्वेस्टमेंट इज अ टर्म व्हिच हैज बीन गोइंग वायरल फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड फॉर द राइट रीजंस आल्सो। वी ऑल नो दैट हाउ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैन चेंज योर लाइफ एंड वी हैव our guest, Mr. Abdullah Al Naim.
4: I have been traveling all my life since I was a kid. I was lucky. I remember the first trip I did outside Qatar without my family was when I was 16. That was more than 20 years ago. I avoid the yes man founders. Okay. If I meet a founder and I tell him, whenever I have an idea and I tell him, okay, why don't you do this? Yeah, we'll do this. Oh yeah, we are thinking about it. I want a founder that's resilient to his idea or her idea in a way that they're gonna move into the future. They're gonna move to test the idea.
3: Doesn't matter how fast the world moves, how ahead the world goes, you have to come back to your roots. You have to come back to the things that ground you.
2: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar. Only on Radio Olive, every Saturday, 8 a.m. till 10 a.m.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने। जनाब खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो ऑलिव 106.3। स्टे ट्यून्ड।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Hi, this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: awesome.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

Radio Station, Radio Olive 106.3 FM.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: I Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Akshay Kumar.
4: Hi, this is Anushka Sharma.
5: And I'm Ashok Vasi.
6: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

की एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण।
2: दीपिका पादुकोण,
1: रेडियो ऑलिव 106.3।
3: I'm in number one, रेडियो ऑलिव।
4: ऑलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: छूटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडो ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस, ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
5: इन्वेस्टमेंट इज अ टर्म व्हिच हैज बीन गोइंग वायरल फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड फॉर द राइट रीजंस आल्सो। वी ऑल नो दैट हाउ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैन चेंज योर लाइफ एंड वी हैव our guest, Mr. Abdullah Al Naim.
6: I have been traveling all my life since I was a kid. I was lucky. I remember the first trip I did outside Qatar without my family was when I was 16. That was more than 20 years ago. I avoid the yes man founders. Yeah. If I meet a founder and I tell them, whenever I have an idea and I tell them, okay, why don't you do this? Hey, yeah, we'll do this. Oh, yeah, we are thinking about it. I want a founder that's resilient to his idea or her idea.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
2: बॉय।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

ऐप डाउनलोडेड और पूरी प्राइवेसी रिस्क में। इटली में रिसेंटली एक फेक व्हाट्सएप का केस सामने आया जो ओरिजिनली व्हाट्सएप जैसा ही लग रहा था। लोगो सेम था, इंटरफेस सेम था, एक्सपीरियंस सेम था, लेकिन अंदर स्पाईवेयर, मतलब डेटा ट्रैकिंग, एक्टिविटी मॉनिटरिंग और पॉसिबल स्पाइंग। और आई वॉज लाइक, कितना स्कैरी पार्ट है ये। हंड्रेड्स ऑफ यूजर ने उसे जेन्युइन समझ के इंस्टॉल कर लिया। और आजकल फेक एप्स ओरिजिनल से ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स जो है वो हमेशा ये बोलते हैं कि सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर या प्ले स्टोर

करो, रैंडम एपीके डाउनलोड्स अवॉइड करो और परमिशन चेक करो, क्योंकि ऑनेस्टली आज के टाइम में फोन ना सिर्फ फोन नहीं है, फोटोज, बैंकिंग, कॉन्वर्सेशन, मेमोरीज, सब कुछ है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है टेक टॉक, वेयर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो याद रखना ऐप स्टोर या फिर गूगल स्टोर से ही करना है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 May तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: JECA.

You got to. So, आजकल ना नई गाड़ियां देखकर ऐसे लगता है कि स्टीयरिंग व्हील्स बोनस फीचर है. मतलब क्योंकि हर जगह पर आपको स्क्रीन्स दिखती हैं, डैशबोर्ड स्क्रीन, पैसेंजर स्क्रीन, रियर डिस्प्ले. कार स्लोली स्मार्टफोन्स जैसे व्हील्स बनते जा रहे हैं. मतलब पहले कार जो था वो इंटीरियर बहुत सिंपल होता था, बटन्स, नॉब्स, फिजिकल कंट्रोल, और अब एवरीथिंग टच बेस्ड है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम टेक टॉक, वेयर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. और इंटरेस्टिंगली इस पर डिबेट भी स्टार्ट गई है. कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एक्सेसिव टच स्क्रीन्स ड्राइविंग को मतलब डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान उनका भटका सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एसी टेम्परेचर चेंज करने के लिए 3 मेन्यू ओपन करने पड़ते हैं. टेक्नोलॉजी कन्वीनियंस के लिए आई है, कॉम्प्लिकेशंस के लिए नहीं. लेकिन कंपनीज ह्यूज स्क्रीन पर क्यों इतना पुश कर रही हैं? यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक फील है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, प्रीमियम लुक है. और ऑनेस्टली अगर ये जनरेशन कार मतलब अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर इंफोटेनमेंट चेक करती है कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं इसमें. आई विल से कि दिस इज़ लाइक कि जो ड्राइवर है उसके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. मतलब जो को पायलट है, मतलब जो बगल वाली सीट पे बैठा है, वो फीचर्स को अच्छे से इंजॉय कर सकता है. बट अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो यू कैन नॉट इंजॉय दीज फीचर्स. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

सो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो वर्ल्ड में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, दैट इज AI फटीग। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है टेक टॉक। मतलब लोग हर जगह AI देख के थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। AI ईमेल्स, फोटोज, AI समरीज, AI रिप्लाईज, और अब यूजर्स भी बोल रहे हैं कि नॉर्मल चीजें भी रहने दो भाई। रिसर्च डिस्कशंस में ये पॉइंट आ रहा है कि कॉन्स्टेंट AI इंटीग्रेशन से यूजर ना मेंटली ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, क्योंकि हर ऐप स्मार्ट बनना चाहता है। और ऑनेस्टली मतलब कभी कभी सिंपल टेक्नोलॉजी मुझे बेस्ट लगती है। हर प्रॉब्लम को AI सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती। AI इज फॉर लाइक यू नो कन्वीनियंस, कि कुछ नई बात पूछनी है, कुछ कन्फर्मेशन चाहिए या कुछ नया पता करना है तो हम चेकआउट कर सकते हैं, बट अदरवाइज एवरीवेयर AI, दिस इज कॉल्ड AI फटीग। बाय द वे, आप दिन भर में कितनी बार AI यूज करते हैं? 3311-1063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive, Jio Bindas.
5: TECN

लगती है। आजकल ना मतलब ये जो नॉइस कैंसलिंग वाला ईयरबड्स है, इसका मार्केट मैसिवली ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोगों को चाहिए साइलेंस, फोकस, स्केप। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है टेक टॉक। मेट्रो में देखो, जिम में देखो, वॉकिंग करते हुए देखो, एवरीबॉडी प्लग्ड इन। और इंटरेस्टिंगली ये जो चीज है, टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कनेक्ट नहीं कर रही है, डिसकनेक्ट भी कर रही है। मतलब क्योंकि कभी कभी म्यूजिक सुन रहे होते हैं और दुनिया म्यूट हम करके बिल्कुल दुनिया से बाहर होते हैं कि हमें समझ ही ना आए कि बाहर चल क्या रहा है। इतना बड़ा मार्केट हो गया है दिस नॉइस कैंसलेशन वाले ईयरबड्स का। समटाइम्स आई फील कि ये मतलब कैसे टेक्नोलॉजी ना धीरे धीरे नई नई चीज़ें लेकर आती है। इवन आई हैव दिस नॉइस कैंसलेशन वाले ईयरबड्स। भाई जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ आई ऑलवेज कीप विद मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको चाहिए थोड़ी सी शांति। आसपास इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी आवाजें होती है, पर उन ईयरबड्स के साथ यू कैन एंजॉय योर ट्रैवल। सो आप मुझे बताओ कि आपने कभी ये नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स ट्राई किए अभी तक या फिर नहीं। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: दिस वीक

You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Tech Talk. Future ka internet na tower se nahi balki sky se aata hai. Satellite internet race na globally fast ho rahi hai. Goal kya hai? Remote areas tak high speed internet pahunchana. Aur honestly, ye game changing ho sakta hai kyunki duniya mein ab bhi kafi sari aisi jagah hai jahan par stable internet luxury hai. Satellite internet ka idea bahut hi simple hai, direct connectivity from space. Aur companies aggressively is race mein invest कर रही हैं. मतलब फ्यूचर में इंटरनेट केबल और टावर से जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करके ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा है और स्काई से सीधे इंटरनेट लेकर आ रहा है. सो आज फ्राइडे है एंड एवरी फ्राइडे वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, वे वी टॉक अबाउट कि भाई दुनिया भर में इस हफ्ते क्या नया हुआ. वैसे अगर मैं बात करूँ ऑटो सेक्टर की, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, इतने सारी नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, साथ ही साथ मोबाइल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं अपनी हाई एंड जो मोबाइल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं. इवन जो बजट फ्रेंडली मोबाइल्स हैं वो भी मार्केट में आ रहे हैं. पर देन मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन सेम चीज़ें बार बार आती हैं और शायद सेम चीज़ें सारे फ़ोन्स में आ रही हैं. मतलब कहीं कहीं तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई कौन सा फ़ोन जो है आप ले सकते हो. बाय द वे, आप मुझे बताओ कि इस पूरे हफ्ते में आपके ऐसे कौन से प्लान्स थे जो आज फ्राइडे को आपने कंप्लीट किए हैं. 3311063 पर यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तुमने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: G-E-C-A.

सो दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. आई नो आज फ्राइडे है, आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, आप अपने ऑलरेडी प्लान्स को बना चुके हो. सो आज कल इंटरनेट की हम बात कर रहे थे. यू आर लिसनिंग रेडियो वाले 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है टेक टॉक. सो इंटरनेट पे एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट आ रहा है. पहले परफेक्ट फोटोज जो थे वो बहुत वैल्यूएबल लगते थे, और अब रियल फोटोज बहुत वैल्यूएबल लगते हैं क्योंकि AI जनरेटेड इमेज इतनी रियलिस्टिक हो गई है कि लोग जो है वो डाउट करने लगे हैं कि असली है या AI. और इस वजह से ऑथेंटिसिटी प्रीमियम बन गई है. रॉ फोटोज, इम्परफेक्ट जो मोमेंट्स हैं या फिर कैंडिड शॉट्स हैं, अब परफेक्शन नहीं प्रूफ इम्पॉर्टेंट हो गया है. और ऑनेस्टली ये सोशल मीडिया कल्चर का इंटरेस्टिंग टर्न है. जहां पहले फिल्टर्स डोमिनेट किया करते थे, अब रियलनेस अटेंशन ले रही है और AI के ज़माने में ह्यूमन टच लग्जरी सा बन गया है. एंड आई विल से कि अगर आप भी इतना ज़्यादा AI का यूज़ करते हैं देन सच में कभी कभी अपने मन का कैप्शन लिख कर देखिए बिना AI की हेल्प लिए. कभी कभी अपने मन से जो चाहो वो लिख कर देखो मैसेजेस में विदाउट यू नो टेकिंग हेल्प ऑफ AI, बहुत हेल्प करेगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. फॉर नाउ अभी के लिए मैं जाती हूँ. कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कुमार।
1: यार ये एक्सपेक्टेशन ही है जो अपने को डिसअपॉइंट करती है, नहीं वरना सुबह से शाम तक हम अपने साथ भी तो अच्छा सा डे स्पेंड कर सकते हैं ना। अरे यार वीकेंड आ गया है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए आ गया हूँ जनाब। और जब बात हैप्पी वीकेंड की आती है तो वीकेंड को हैप्पी बनाने का जिम्मा भी खुद का होता है, लेकिन इसमें एक दोस्त चाहिए होता है जो यार वीकेंड के दिन कंपनी दे दे बढ़िया सी और चार चांद लगा दे। तो चलिए मैंने सोचा हैप्पी वीकेंड में आज बढ़िया सी लाइब्रेरी खोली है, लेकिन कुछ गाने हैं जो मुझे मन कर रहा है कि आपकी चॉइस के चलने चाहिए। तो जल्दी से इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर जाइए और रिश्तेदारी थोड़ी सी गहरी कर जाइए। इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और अपना फेवरेट गाना बताइए, ताकि आप जहां से भी आज सुन रहे हैं मुझे जल्दी से स्टेटस पे वीडियो लगा के बताइए कहां से आप सुन रहे हैं मुझे। और हाँ, बस वाइब्स हाई नहीं बल्कि वॉल्यूम भी हाई रखनी है, ताकि जो आसपास का ऑरा है ना बिल्कुल चिल पिल रहा है, और ताकि दिल भी सुन के कहे जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

अच्छा कभी कभार सोचता हूँ कि हम आने वाले कल के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो कल आता है और फिर हम उसके उसके आने वाले कल की मेहनत करते हैं। मतलब कितने स्यापे हैं यार, मतलब जिंदगी में मतलब खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और वो पैसा जा कहाँ रहा है, उसके बाद उस पैसे को जहाँ पे इन्वेस्ट किया वो पैसा जब मतलब ये काम ही नहीं आ रहा है तो फिर हम ये भाग ही क्यों रहे हैं। बट दैट इज अ फैक्ट। 106.3 रेडियो ओलिव्स, आपके दिल की आवाज। मैं हूं आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूं मेरी जान। देखो यार, अपनी कमाई का 10% लगाना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी अर्निंग में से 10% लगाते हो, जो मेरी मम्मा ने मुझे बचपन में सिखाया था कि 10% ऑलवेज स्पेंड ऑन योरसेल्फ। देखो जब आपने कमाया और अगर अपने ऊपर खर्च ही नहीं करा, वो पैसा किसी आराम का ही नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा पैसा उड़ा हो, ऑब्वियसली दैट इज नॉट माय कंसर्न, बट पैसे को यूज करो, उस पैसे को सिर्फ जमा मत करो, उसको एटलीस्ट 10% सिर्फ 10% बोला मैंने, उसको अपनी कमाई पे अपने ऊपर लगाओ यार उस कमाई को, ताकि मजा आए। और पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज वीकेंड है, तुम पैसे बचाने के चक्कर में जो घर पे बैठे हो ना, निकल जाओ यार, एक लाइफ मिली है, जस्ट वन लाइफ, वन आवर, इसलिए कि एक घंटा तो कहीं घूम के आओ, क्या पता कुछ बढ़िया सा खाने का ही दिख जाए या फिर कुछ बढ़िया सा पहनने को मिल जाए। शौक है यार, शौक बड़ी चीज होती है ना, शौक तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है जिनके लिए फर्स्ट मूवी, मतलब जब जिस दिन रिलीजिंग डे होती है, फर्स्ट शो और फर्स्ट आर में वो पहला टिकट होता है जो ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने का शौक रखता है। तो भैया जब मूवी की बात आएगी तो कुछ दिन में ट्रिविया भी ले ही आएंगे, लेकिन फिलहाल तो एक बढ़िया सा बॉलीवुड का गाना लेकर आया हूं आपके लिए, फिर जाएगा नहीं। सुन रही है रेडियो ऑल इन जी ऑफ बिंदास, हैप्पी वीकेंड।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

भाई वीकेंड पे रील्स की रेस होती है, सबको चाहिए लाइक्स और प्रेज, है ना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज सुना, मैं हूँ आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अच्छा आप दिन भर में कितनी जगह घूमते हो, कभी व्लॉग्स बनाए? अरे बनाया करो यार, कुछ नहीं पता है। इस चीज से मुझे ये समझ आने लगा है कि लोगों को ना आज के टाइम पे दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, वहां पे कितनी गाड़ियां गुजरी, जैसे ऐसी पसंद आता है यार। शांति से किसी के साथ रहना, किसी के साथ साथ घूमना, अननोन लोगों के साथ उनकी जिंदगियां देखना, नहीं वैसे कोई बीच पे स्लो मो चल रहा होता है तो कोई कॉफी मग के साथ गुड वाइब्स होने लिख रहा है, और घर बैठे लोग पुरानी थ्रोबैक पिक डालकर लिख देते हैं मिस दोज डेज, तो कोई दिक्कत नहीं यार। वीकेंड का असली स्ट्रेस इंस्टा पे कैप्शन क्या लिखेंगे, तो आप बताइए आज आपका इंस्टा कैप्शन क्या है। मुझे जल्दी से इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और बताइए आज आप कहां घूमने वाले हैं, कहां जा रहे हैं और क्या है आपका बड़ा मजेदार कैप्शन। आपका कैप्शन चोरी नहीं करूंगा लेकिन हाँ शानदार फेमस करूंगा, ताकि हर कोई जाके आपकी पोस्ट को लाइक ठोक सके, कमेंट दे सके। फिलहाल इस गाने के साथ आप ठोकिए तालियां, क्योंकि दिल भी कहेगा जियो बिंदा।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
5: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

ध्यान दिए आप बैठे होते हो खाली के लिए कुछ काम कर रहे हो तो, और कई बार तो खाली ऐसे बैठे बैठे कोई सा भी गाना सुनकर आपको एकदम से कहीं पे सुना होगा, कहीं बहुत दिन पहले सुना होगा, अचानक से गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये माइंड भी कितना क्रिएटिव है ना, इसको कहां से कुछ भी याद आ जाता है, कौन सी भी डिस्क में से कोई सा भी फोल्डर खुल जाता नहीं। 106.3 रेडियो ऑलिव्स आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूं मेरी जान। क्या खाया क्या पकाया ये तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आपके दिमाग के फोल्डर से आज कौन सा गाना पकड़ता है। जी हाँ, फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये ट्रिविया लेकर आया हूँ। बताइए कि पहला गाना कौन सा था जो सबसे पहले रिलीज हुआ था कभी खुशी कभी गम का। हिंट देता हूँ, अच्छी आवाज नहीं है लेकिन दिल अच्छा जनाब, इसलिए तो आपकी चॉइस के गाने निकाल के ला रहा हूँ। नेहा जी ने गाना बड़ा अच्छा सा मेरे से रिक्वेस्ट किया है, आप इंस्टा पे जाके रेडियो ऑलिव के पेज पर मेरे को मैसेज कीजिए और अभी फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। जियो बिंदास।

मुझे याद है कि उस समय गाना आता था और मैं स्किप कर देता था, पता नहीं क्यों, उस समय इमोशंस नहीं थे। और अब यही गाना मैं कम से कम 10 बार सुन लेता हूँ। यही होता है बड़ा होना, मैच्योरिटी आना। 106.3 रेडियो ऑलिव्स, आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करो जनाब। वैसे मिडनाइट लाउंज के उस प्यार भरे समा के बाद ना, ये प्यार भरे गाने जब दिन में भी आ जाते हैं ना, आए हाय हाय, रोमांटिक सा, मजेदार सा, मसालेदार सा, बिल्कुल एक दिन बना देते हैं ना, मसालेदार सी शाम बना देते हैं। वैसे म्यूजिक का मैजिक, गाना था एकदम क्लासिक। और रेहान जी ने मुझे मैसेज का रिप्लाई किया है कि कभी खुशी कभी गम का वो गाना जो सबसे पहले रिलीज हुआ था, सूरज हुआ मथम, एसआरके और काजल की ड्रीमी केमिस्ट्री के साथ इस गाने से 4 चांद लगा दी थी। वैसे ये गाना आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट का असली किंग है। वो हालांकि बात अलग है, बचपन में हमसे खूब स्किप मारे हैं गाने, है ना। फिलहाल अभी एक और गाना है जो रेहान जी आपकी कहने पे, आपकी रिक्वेस्ट में मैं चलाने जा रहा हूँ। तो यार आप भी गाने की डिमांड करो, रेडियो ऑलिव के पेज पे जाओ और इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश लिख के अपने गाने को बस बताओ या नाम बताओ, बाकी दिल भी कहेगा सुन के जियो बिंदास।

अच्छा, जो लोग घर पे भी रहते हैं ना, वीकेंड के दिन कहीं नहीं जाते, उनको भी मैं बता दूं कि आप अपना वीकेंड स्पेशल बना सकते हो अपने इस जादुई घर में। हाँ हाँ, कैसे? अरे बताएगा ना आपका ये दोस्त। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा हैप्पी वीकेंड, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि घर में प्लांट्स रखने से ना सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ती है बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है, और जब स्ट्रेस कम होगा तो हैप्पी वीकेंड अपने आप होगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है ना। तो साइंस कहता है कि इंडोर प्लांट्स आपके घर की वाइब्स और मूड दोनों अपग्रेड करते हैं, और ये इफेक्ट हर होम ओनर प्लस रेंटर प्लस हर एक इंसान को पता चलना चाहिए जो घर में रहते हैं और घर की वाइब्स हमेशा अच्छी चाहते हैं। और एक अमेजिंग टिप और देता हूं, जो पर्सनली मुझे पता है कि घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ना वाटर एलिमेंट रखना, जैसे एक्वेरियम या वाटर फाउंटेन, ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, राइट? सो इंडोर प्लांट्स का सबसे ज्यादा काम दो चीजों में होता है, ऑक्सीजन और स्ट्रेस रिड्यूस करने में, दोनों चीजें। तो बस प्लांट्स लगाओ, अपना दिन बिंदास बनाओ, ताकि आपका दिल भी बढ़िया गाने सुन के कह गए, गाने के लिए तो दिल ही खुश है बस, है ना, वो भी सुन के कह गया जी ओ बिंदास।

अच्छा आपको पता है कि अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट्स वॉक करें ना तो आपका ब्रेन न्यू कनेक्शंस बनाता है और स्ट्रेस हॉर्मोन्स 20-30% तक कम हो जाते हैं। नेचर के साथ सिंपल डेली एक्टिविटीज का मैजिक होता है, सच ही बता रहा हूँ। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी जान हम लोग। और जब वीकेंड की बारी आती है ना तो यार सबसे ज्यादा हम स्ट्रेस लगाते हैं कि कहाँ जाएं, क्या खाएं, कैसे करें, और ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं बनने हमारी बॉडी में। और ये छोटे छोटे स्ट्रेस हमें चिड़चिड़ा करते हैं। अब आप कहेंगे यार ये तो फन है, फन तो है यार, लेकिन इस स्ट्रेस को खत्म करने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। किसी भी चीज को बॉडी में लाने और उसको खत्म करने का तरीका जरूर होना चाहिए, इनटेक और आउटटेक होनी चाहिए। तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आज से वॉक जरूर है करना। तो अगर आसपास कहीं मॉल जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो ट्राई टू वॉक समटाइम, एटलीस्ट कुछ देर के लिए तो वॉक करो। उसके बाद जाके वहां से आप कैब करो या फिर अपनी गाड़ी थोड़ी सी दूर पार्क करो, या फिर आप जैसे भी तरह से ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस लो ताकि जो वीकेंड का दिन है ना आपका ऐसा ना हो कि सिर्फ इनटेक और आउटटेक होना भूल जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि ऑफिस वाले पूरे हफ्ते इतना आपका खून तक चूस चूस के निकाल देते हैं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं बचती है, लेकिन स्टिल जो फैट है उसको बर्न करने के लिए और जो टेंशन और स्ट्रेस है उसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा वॉक भी जरूरी है। फिलहाल तो एक गाना बहुत जरूरी है, कहीं जाएगा नहीं। सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

radio station, Radio Olive 106.3 FM.

अच्छा बहुत बार होता है कि हम करते कुछ हैं बड़े दिल के साथ, और फिर जब हम कई बार ठीक है ना यार होगा देखा जाएगा वाले सीन पे आ जाते हैं ना, तब वो चीज बड़ी हाई सुपरहिट हो जाती है। नहीं वैसे बॉलीवुड का फन अब आपके कान तक जाना चाहिए, नहीं आपके कानों में जाएगा तभी तो आपको बॉलीवुड की सच्चाई पता चलेगी, आपके SRK की सच्चाई। जी हाँ, वो सच्चाई जिससे आप ही रूबरू होना चाहते हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ RJ आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब। दोस्तों क्या आपको पता है, आप जानते हैं कि SRK की पहली बॉलीवुड मूवी दीवाना 1992 में रिलीज हुई थी, लेकिन उनको असली फेम जो मिला था वो एक साल बाद 1993 में मूवी बाजीगर से मिला था। जी हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात, बाजीगर के लिए इनिशियली प्रोड्यूसर्स ने किसी और एक्टर को कंसीडर किया था, लेकिन SRK ने ऑडिशन में इतना चार्म और एक्टिंग दिखाया कि उन्हें फाइनल सिलेक्शन मिल गया। वैसे शाहरुख खान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन सी थी अगर आपसे पूछूं तो आंसर मैंने बता ही दिया है, बाजीगर। तो दोस्तों बॉलीवुड के ये छोटे छोटे सीक्रेट्स ही मूवी के मैजिक को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ऐसी फैक्ट्स और बताता रहूंगा, अभी तो फिलहाल एक प्यारा सा गाना चलाता रहूंगा। कहीं जाएगी नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल इन। जी ओ बिंदास, हैप्पी वीकेंड।

अच्छा कितना अच्छा लगता है ना, पूरा दिन वीकेंड का अच्छा सा एक वेल स्पेंड डे हो जाए और उसके बाद शाम को बस गाड़ी में बैठे हूँ, खिड़की के बाहर की तरफ देख रहे हूँ, धीरे धीरे मैं गाने आपके लिए चला रहा हूँ। बस शर्त ये है कि भाई गाड़ी आप ना चला रहे हो, अगर आप चला रहे हो तो दाएं बाएं ना देखकर सीधा सामने देखें, राइट, ध्यान से देखें। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब हम। मैं जानना चाह रहा था यार कौन कौन कहाँ से आज मुझे सुन रहा है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। चलो एक छोटा सा पूल करते हैं, देखते हैं कि इस समय कहाँ की ऑडियंस मुझे ज्यादा सुन रही है। क्या मुझे पाकिस्तानी भाई ज्यादा सुन रहे हैं, या फिर इंडियन लोग ज्यादा सुन रहे हैं, या फिर पंजाबी लोग सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ से हैं आप, बस मुझे जल्दी से बताइए। क्या आप कतर में इस वक्त कहीं से सुन रहे हैं, या फिर यूएस में कहीं से सुन रहे हैं, कहाँ से आप सुन रहे हैं जल्दी से मुझे बताइए। और साथ में अगर आप इस समय इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव को सुनते हुए टैग करेंगे तो मैं डेफिनेटली, और आरजे आकाश यानी मेरे को भी टैग कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस समय मुझे कहां से सुन रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपके स्टेटस को अपने रेडियो ऑलिव के पेज पर शेयर करने का जल्द से जल्द ट्राई करूंगा, लेकिन यह आपको जल्दी करना होगा। अभी फिलहाल आ रहा हूं एक बढ़िया से गाने की रिक्वेस्ट सरफराज जी ने की है, जो इस इवनिंग को आए बिंदास और भी बिंदास बना देंगे। तो चलो यार बोलते हैं एक साथ, जियो बिंदास। Happy weekend!

0: के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाई परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009 1063 और 3082 1063।

0: अच्छा वैसे टेक वर्ल्ड में ना, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में इतने वंडर्स हैं कि कभी ध्यान से बैठ के सोचो तो आंखें चौकन्ने में रह जाती, नहीं कि इतना इतना कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई है और कैसे कैसे किस किस की कहां कहां थिंकिंग गई है। कहते हैं ना जो आप सोचते हो वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, बस सोच के दीजिए। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, थिंक बिग। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब। क्या आप जानते हैं कि हर स्मार्टफोन में आज का एआई असिस्टेंट जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट एक सुपर कंप्यूटर का इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग पावर यूज करता है? जी हाँ, यानी आपके फोन के अंदर का प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर ऐसे एल्गोरिदम्स रन करते हैं जो पहले सिर्फ लार्ज कंप्यूटर सेंटर्स में पॉसिबल था। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि स्मार्टफोन्स का एवरेज एआई कैलकुलेशन कैपेसिटी एक रॉकेट को स्पेस में भेजने वाले कंप्यूटर्स के बराबर हो सकता है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का मैजिक ही है जो आपकी लाइफ को इतना इजी बना रहा है। सही यूज कीजिए, बढ़िया सोचिए, बड़ा सोचिए, क्या पता आपकी भी सोच से एक दिन कुछ नया इन्वेंशन हो जाए। क्या कहते हो? वैसे ये सोचा करो कि अब जो आने वाला वीक है ना, इसको और बिंदास बनाना है। टेंशन नहीं लेनी है, नहीं जैसे अभी इस गाने के साथ बस चिल अप करो यार, वाइब्स हाई करो और वॉल्यूम भी, और कहो साथ में जियो बिंदास।
1: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: You are listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
2: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: अच्छा आपको पता है पावर नैप नाम की चीज जो है ना वो बहुत बहुत सही चीज है। मतलब मैं ये नहीं कहता देखो दिन में सो ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभार ना पावर नैप ले लेनी चाहिए। जब दिमाग चलना खासकर बंद हो जाए, आलस आ रहा हो बॉडी में, छोटी सी एक पावर नैप 15-20 मिनट की एक पावर नैप ले लो, धमाल हो जाएगा। नहीं 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब, और वीकेंड का मैजिक, वीक डेज के स्ट्रेस की फाइट, आज का सीक्रेट फैक्ट सुन लो मेरे दोस्तों। जनाब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च कहती है कि वीकेंड में ना सिर्फ 2-3 घंटे का आउटडोर जो नेचर वॉक होता है ना, सनलाइट एक्सपोजर आपके जो कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन लेवल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि नेचर में टाइम स्पेंड करने से क्रिएटिविटी और फोकस भी बूस्ट होता है। मतलब आपका जो वीकेंड के बाद का जो दिन है ऑफिस में, आप फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे। तो इसलिए अपना वीकेंड में शॉर्ट मॉर्निंग वॉक या पार्क विजिट इंक्लूड करो। लाइट मेडिटेशन या म्यूजिक थेरेपी भी स्ट्रेस कम करता है। बाकी वर्क डे पर आप मॉर्निंग में 10 मिनट का रिचुअल यही सब रिपीट करो, टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वैसे वीकेंड में नेचर में टाइम स्पेंड करना, ओए होए होए होए होए, ये एक अलग ही मजेदार चीज होती है। तो जब भी कहीं घूमने जाओ ना दोस्तों, तो कोशिश करो कि अपने आप को चार्ज कर पाओ, ऐसी चीजों को गेन करो, है ना। तो अपने लिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, इसलिए तो आपके दिल को खुश करने के लिए, उसकी केयर करने के मुताबिक आपके लिए बढ़िया सा गाना चलाने जा रहा हूँ। ओनली रेडियो ऑन जियो बिंदास,
1: कतर्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर, ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
4: Cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: भाई सबका वीकेंड बन गया तो हमारी बारी भी सही नहीं, तो चलिए अब हम भी गुड बाय टाटा बाय बाय करते हैं। क्या कहते हैं 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे थे जनाब हम, लेकिन हैप्पी वीकेंड ऐसे सेलिब्रेट करते रहेंगे क्योंकि जाता जाता अपनी लैंग्वेज से बहुत बेमिसाल सा गाना लगा के जा रहा हूँ जो आपके सफर को चाहे जिंदगी का हो या गाड़ी का ऐसे खूबसूरत सा बना के रखेगा। बाकी रात के सफर में मिलेंगे हम, जी हाँ, सैटरडे टू वेडनेसडे मिड नाइट लाउंज में, जिसे सुन सकते हैं आप प्यार भरे गाने, ओए होए वो अफसाने, ओए होए होए होए, या फिर कुछ मोटिवेशनल चीजें, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप शायद जानते भी हैं पर अनजान बनने की कोशिश करते हैं। यहां से जाने के बाद आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके रिश्तेदारी बढ़ाइए, थोड़ी गहरी कर जाइए और इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश लिख के अपने दिल की बात कह जाइए। कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना मेरे दोस्त, आप अकेले नहीं हो और कहने को तो हर कोई अकेला है, तो इसलिए बिल्कुल अकेला नहीं समझना। अपने दिल की बात जब भी कोई आए ना, कोई आसपास ना भी देखे, तो बस इंस्टा जिसको आप दिन भर स्क्रोल करते खोलना, रेडियो ऑलिव के पेज पे इनबॉक्स में जाके हाय आरजे आकाश लिख देना और बस इतना लिखना है यार आकाश कुछ बात करनी, बस देखना फिर आपका ये दिल की आवाज का जो आकाश का असर है ना, ओए होए होए, आपको आकाश में ले जाएगा साथ में आसमान पे। चलता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में हमेशा कहते रहिए जियो बिंदास, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।
1: 106.3 रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे पिंदस मॉर्निंग। पिंदस मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: FM।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
0: Gio Bindas.